0: তাত পানাং সে নি রেগ্রমেস্তিং যুগ পেকা মোহাম্মদ শেফেরিলে তং থোপাগনি ফুলকানি ইচুসলু সানেজাজ নাশে আকাশফানি লিনে ইজুঞ্জিক তাইন কাজে তা আকাশফানি দেলিনে সমাচার প্রভাত ইয়ংতেস্তিং নে মর্নিং নিউজ সানেজাজ
1: আকাশবাণী সে সমাচার প্রভাত কে সাথ মে মুকেশ কুমার বল मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
4: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य

0: आने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन, व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने

0: अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining

0: ऐसे केस में हमारे पास जो बचता है वो होता है सिस्टमिक थेरेपी।
1: ए लुगुन निशाना लंग्या से आकाशवाणी लेने सने जिकता इन

0: Dersen geçen hangi çering çorultan yancan dolma iske selkani lojik sanazat. Kaseta koran iske selkani yan lojikan sanazat.
1: नलीफाई कर देते हैं, उसको इनफेक्टिव बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। तो बहुत सारी

0: फिल्म में लुई डिग्री में नादा संगी चरंगे लता मंगेशकर तं ठपा गुने सलखने मैंने प्यार किया फिल्म में लो उस नजर्स फिल्म में लुई डिग्री में ना का सता आशा भोसले तं ठपा गुने सलखने इकर्स फिल्म में लो उस नजर दिन आनंद बख्शी सुमजत खने लुयंग स्टिकन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल
1: इनका सच्चा इश्क जमाने को

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म लोई टिक्रमना कसता किशोर कुमार तंग ठोपा गुनिसल खानी सट्टे पे सट्टा फिल्म लो सनजात

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवा

0: निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इससे के अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। 2 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July 2026, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code, UCC, will be implemented in the state. The Chief Minister announced in the Assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the State Cabinet meeting on July 2nd. Following the models of Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on a total of 9 subjects including marriage, divorce and adoption and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. Lok Sabha Speaker Om Birla has paid tribute to the heroes of the Santhal Hul on the occasion of Hul Day. In a social media post, Mr. Birla remembered the immortal martyrs who made the supreme sacrifice for India's independence, tribal identity and social justice. He also paid homage to thousands of brave tribal men and women who, under the leadership of Sidho and Kanhu, launched the historic Santhal Hul against colonial rule, exploitation and injustice. Lok Sabha Speaker Om Birla has extended greetings to all elected representatives on International Day of Parliamentarism and to democracy association across the world. In a social media post, Mr. Birla said that Parliament is the supreme expression of the people's aspirations, rights and trust, where ideas are churned, policies are crafted and the direction of the nation's future is determined. Delhi government has approved an ambitious electric vehicle EV policy. As per the new policy, EV cars priced up to 30 lakh rupees have been exempted from registration fees and road tax. The new policy also offers a 1 lakh rupees

0: plan to execute this in phases over the next 4 years. Union Information and Broadcasting Ministry has announced two major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav in New Delhi yesterday. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. India has intensified its humanitarian outreach in earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad, expanding relief efforts with a focus on providing medical assistance and emergency support to those affected by the disaster. The Embassy of India in Caracas, Venezuela, shared an update on social media, saying Operation Amistad has intensified efforts for disaster relief in Venezuela with a healing touch to those affected by the earthquake. In the FIFA World Cup, Morocco defeated Netherlands 3-2 on penalties after a dramatic 1-1 draw across 120 minutes in their FIFA World Cup 2026 round of 32. Bart Verbruggen, while Mickey van den Ven forced a world-class save from Moroccan keeper Yassine Bounou. Cody Gapko scored a brilliant opening goal for the Netherlands after receiving a quick pass from Crisiento Samuel. After a chaotic penalty shootout featuring misses from Quinton Timber and Achraf Hakimi, Ismail Saibari scored the decisive spot kick to send Morocco through. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters in the national capital of Delhi will begin today. Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok Kumar, announced this while briefing the media in New Delhi yesterday. He said booth-level officers, BLOs, will visit every household from today till the 29th of July to distribute the enumeration forms and collect the duly filled applications from eligible electors. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल मुख्य समाचार भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल अमेरिका और ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे भारत ने वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप राहत कार्यों को तेज किया मोरक्को पराग्वे और ब्राजील फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे अब समाचार विस्तार से भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य के घायल होने की खबर है विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है एक रिपोर्ट
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है समाचार कक्ष से शक्ति सिंह
1: अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल फेडरल रिजर्व की गवर्नर लीसा कुक को

0: पद से हटाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने 5 के मुकाबले 4 मतों से ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने कहा कि लीसा कुक को पद से हटाने से पहले उन्हें कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए था। अदालत ने माना कि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद किसी भी अमरीकी राष्ट्रपति ने किसी गवर्नर को हटाने की कोशिश नहीं की थी। इस फैसले को फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि अदालत ने एक अन्य फैसले में राष्ट्रपति के अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने के अधिकार का दायरा बढ़ाया है। लीसा कुक ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें खारिज किया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल में नेशनल असेंबली ने विनियोग विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बालगे द्वारा पेश विधेयक बहुमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र में लागू कर नागरिकों के लाभ के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में निजी विद्यालयों पर प्रगतिशील कर इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जो लोग खर्च उठा सकते हैं उन्हें उन लोगों की सहायता के लिए अधिक योगदान देना चाहिए जो वहन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि देश में 1/3 विद्यार्थी सामूहिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। मध्यम आय वाले लोगों के लिए राहत उपाय के अंतर्गत कर छूट सीमा बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि संवैधानिक निकायों के लिए बजट नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि मौजूदा सरकार की कार्यभार संभालने से पहले ही बजट सीमा तय कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट और कार्यक्रमों की घोषणा की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वेनेजुएला में भारतीय दूतावास ने बताया कि भारतीय सेना ने वहां एक अस्थायी फील्ड अस्पताल स्थापित किया है जहां भूकंप प्रभावित लोगों का उपचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सेना प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इससे पहले 28 जून को भारत ने शक्तिशाली भूकंपों से प्रभावित वेनेजुएला के लिए आपात सहायता सामग्री भी भेजी थी। भारत ने कहा है कि इस कठिन समय में वे वेनेजुएला के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कानून का शासन ना तो कोई कल्याणकारी योजना है और ना ही कोई आर्थिक नीति, बल्कि ये सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी करने वाली सरकार का शिकार ना बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में अपने संबोधन में ये बात कही। सम्मेलन का विषय था कानून के शासन की रक्षा, भारत और स्वीडन के अनुभव। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में विधि सम्मत शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक लोकतंत्र के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा केवल शक्ति नहीं बल्कि अदालतों को सौंपी गई संवैधानिक जिम्मेदारी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन के सिद्धांत पश्चिम से ली गई औपनिवेशिक शासन उपरांत अवधारणा नहीं है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य सहित कई देशों में तापमान के नए रिकॉर्ड बने हैं। यूरोप में 19 करोड़ से अधिक लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना करना पड़ रहा है।
3: इटली में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट वाले शहरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जर्मनी, चेक गणराज्य, पोलैंड और हंगरी में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। फ्रांस और जर्मनी में ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पेरिस में भी हाल के दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 21 जून से यूरोप में 1,300 से अधिक मृत्यु भीषण गर्मी से हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसिस ने कहा कि यूरोप अन्य किसी भी महाद्वीप की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जहां तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से मात दी। दो घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें पहले 1-1 से बराबरी पर रहीं, जिसके बाद मोरक्को ने पेनल्टी में जीत दर्ज करते हुए राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया। इससे पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में जापान पर 2-1 की जीत के बाद ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। गैब्रियल मार्टिनेली ने चोट के आखिरी क्षणों में विजयी गोल दागकर 5 बार के चैंपियन ब्राजील को राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में एक नई उपलब्धि दिलाई। एक दूसरे मुकाबले में पैराग्वे ने अतिरिक्त समय में 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को 4-3 से मात दी। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में ये जर्मनी की पहली हार है। इस जीत के साथ ही पैराग्वे विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। भारत ने वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप राहत कार्यों को तेज किया। और मोरक्को, पराग्वे और ब्राजील फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स में आपकी ही मनपसंद गीतों की सुरीली माला लिए। इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और संदेश ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं और हमारा प्रयास रहता है उन सभी संदेशों को कार्यक्रम में सम्मिलित करने का। आपके मन में कोई बात हो, कोई दुआ, कोई छोटा सा संकल्प या कोई खास संदेश, तो उन्हें भी आप हमें अपने प्रिय गीतों के साथ अवश्य भेजें। तो श्रोताओं, देरी कैसी, हमें जल्द ही लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर हमारे ईमेल पते पर fmgoldairdelhi@gmail.com। मैं पुनः ईमेल स्पष्ट करती हूँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। और क्या पता कहीं अगली सुरमई धुन आपकी ही पसंद से सजी हो। हम यदि आप सभी के संदेश ना शामिल कर पाए तो क्षमा कीजिएगा और आइए आरंभ करते हैं इस धुन से।

संगीत की इस लहर के बाद आइए सुनते हैं आपकी आवाज। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमें संदेश लिख रहे हैं अपने फरमाइशी गीत के साथ। बसमत रोड महाराष्ट्र से रंजीत कारेगावकर, कंचन, सृष्टि और समरजीत हमें लिख रहे हैं। खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी रमेश, शेख मूसा भाई जान, राजकुमार बुराना और आदलपुरा गोंगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा भी इनके साथ जुड़े हैं। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है, कहां से लिख रहे हैं ये नहीं लिखा है सुनील गायकवाड़ जी ने, महाराष्ट्र पुणे से लिख रहे हैं सुषमा राजवीर और अनन्या के साथ। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है सिद्धार्थ, अर्चना, प्रणय और हीरामन जी का। मूताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और आराध्या कुमारी ये भी हमें सुन रहे हैं और अपना फरमाइशी गीत भी लिख भेजा है। मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम, मुस्कान और जीवयम इनके साथ जुड़े हैं। दिग्दर्शन जी भी इनके साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा जी इनके साथ जुड़े हैं, ये भी हमें सुन रहे हैं। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल और जयवीर सिंह जी और डॉक्टर अमनदीप का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज इनके साथ जुड़े हैं। आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं आइए एक बार फिर पढ़ें आपके संदेश। सुदर्शन जी, अनीता, सिमरन लिख रहे हैं हमें शांतिनगर सोनीपत से। बहुत ही प्रिय संदेश इन्होंने लिख के भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अफरोज शेख लिख रहे हैं सुपाल बिहार से। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या हमें लिख रहे हैं। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू भी हमें सुन रहे हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से। उत्तम नगर वेस्ट से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। और ललित लिख रहे हैं हमें जम्मू कश्मीर से, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं ये गीत आपकी फरमाइश पर।

आइए श्रोताओं, फिर पढ़ें आपके संदेश और देखें किसने हमें कहां से और कौन सा गीत भेजा है। सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग ने हमें लिख भेजा है। मुरादाबाद से ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश में है ये। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर जी, इन्होंने भी हमें अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है। नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद और सूफिया हमें लिख रहे हैं बलीमरण से। यासीन जी जुड़े हैं हमारे साथ नाजमा बेगम, तौसीफ और कलीम के साथ, गंज डुंडवारा से ही। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य हमारे साथ जुड़े हैं मुरादाबाद से। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू हमारे साथ जुड़े हैं धनौरी तेलीवाला से। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी पसंद का एक गीत। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और गोटना जैन ने हमें संदेश भेजा है।

समय शीघ्र ही इशारा करने वाला है, पर उससे पहले आइए नजर डालें फिर आपके भेजे हुए संदेशों पर। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी ने हमें संदेश भेजा है। ये सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिल्ली से कमलेश मुकुल, सचिन और दीपांशु ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष हमारे साथ जुड़े हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। उमेश कुमार, दिनेश, अनुज और सोनित हमारे साथ जुड़े हैं खयाला से। वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ सिटी से सतीश जी और विमला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आदर नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं और ताज जी भी इनके साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु, अदनान और फैजान भी हमारे साथ जुड़े हैं और इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम दिवांगन, चंपा जी, राजू, नेहा और जगदीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जसोला विहार, नई दिल्ली से राजेश जी, शीतल जी, राशि और सार्थक सावन का आह्वान कर रहे हैं, तो आइए हम भी इनके साथ जुड़ जाएं।

श्रोताओं, आपके संदेश, आपके अनुरोध और आपकी संवेदनाएं ही इस कार्यक्रम की रूह हैं। अपना प्रेम और प्रोत्साहन ऐसे ही भेजते रहिए, हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है। हाथ छुड़ाए जाते हैं अक्सर, मगर रिश्ते नहीं छुड़ाए जाते। मिलते हैं समाचारों के पश्चात। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। और आपको शीघ्र ही करूंगी नमस्कार, पर कुछ और नाम भी ले लूं पहले। सुनील पाठक, कमल, दीपिका गाव्या और सुच्चा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रगेश और प्रीतेश जी और पूरा संघई परिवार हमारे साथ जुड़ा है। हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक हमारे साथ जुड़े हैं। और नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, अब आपको इस मधुर गीत के साथ मैं करती हूँ नमस्कार। मिलेंगे 11:10 पर और आपको लेकर चलूंगी एक अनोखी यात्रा पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी संघर्ष विराम के बाद हो रही है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान का स्मरण किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोरक्को, ब्राजील और पराग्वे फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, सुप्रभात और हार्दिक स्वागत है आपका उस यात्रा पर जहां हंसते और गाते हम चलते हैं एक नए शहर, एक नई दास्तान खोजते हुए। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तस्वीर और मैं प्रियांशी भटनागर आज आपको इस मनमोहक सफर पर अपने साथ लेकर चल रही हूँ भारत के उस अद्वितीय और पावन अंचल की ओर जहाँ हमारी संस्कृति के चार अलग अलग रंग, कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार एक सुंदर भौगोलिक कोलाज की तरह आकर आपस में मिल जाते हैं। तो चलते हैं कैमूर और विंध्य की अनंत श्रृंखलाओं के बीच बसे वैभवशाली सोनभद्र। श्रोताओं, साल 1989 से पहले सोनांचल नाम से विख्यात इस पावन क्षेत्र का गौरवशाली इतिहास अग्नि पुराण तक जाता है। संस्कृत में शोण का अर्थ है नदी की वो लाल रेत और भद्र का अर्थ है कल्याणकारी। इस मंगलकारी और पवित्र नदी के आंचल में सिमटे इस जिले की अनकही दास्तानों को आइए सुरों के धागों में पिरोते हैं। तो चलें, निकल पड़े इस सफर पर।

श्रोताओं, पावस पावन सोन नदी के किनारे जागृत होती है हमारी आध्यात्मिक चेतना। अपनी अनूठी पौराणिक मान्यताओं के कारण सोनभद्र को अत्यंत आदर के साथ गुप्त काशी कहा जाता है। इसका गौरवशाली उल्लेख रामचरितमानस और अग्नि पुराण में भी मिलता है। यहाँ के महलपुर में स्थित त्रिवेणी संगम पर सोन, रेणु और बिजुल नदियाँ एक दूसरे में समाहित होती हैं। इनका पावन जल ग्रीष्म ऋतु में भी कभी नहीं सूखता और गंगा नदी के ही समान इन्हें भी पवित्र माना जाता है और पूजा जाता है। और यहीं पर स्थित है श्रद्धा का अद्भुत केंद्र शिव द्वार धाम। यहाँ महादेव ने अघोरी रूप में अपनी गुप्त साधना की थी और यहीं स्थापित है 11वीं शताब्दी की भगवान शिव और माता पार्वती के काले पाषाण की अलौकिक प्रतिमा। इसके दर्शन मात्र से ही मन असीम शांति से भर जाता है, तो आप यहाँ आए तो अवश्य जाइएगा। चलिए, गुप्त काशी के इस दिव्य रूप को अंतर्मन में समेट कर आगे बढ़ते हैं इस सुंदर यात्रा पर इस मधुर संगीत के साथ।

श्रोताओं, अब समय हो चुका है एक अल्प विराम का। लौटकर आपको बताएंगे धरती पर जीवन की शुरुआत के गवाह और दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म पार्क के विषय में। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और तस्वीर कार्यक्रम में मैं प्रियांशी आपको पौराणिक काल के रहस्यों को समेटे सोनभद्र की यात्रा पर ले चल रही हूँ। श्रोताओं, हमारी ट्रैवल डायरी में अगला पड़ाव है रॉबर्ट्सगंज से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर सोनभद्र शक्तिनगर स्टेट हाईवे 5A के पास स्थित सलखन जीवाश्म पार्क। वाराणसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में 25 हेक्टेयर में फैला ये पार्क दुनिया के सबसे बड़े और प्राचीन स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म क्षेत्रों में से एक है, जहां चट्टानों पर बने छल्ले लगभग 140 से 160 करोड़ वर्ष पुराने हैं, यानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का साक्षात प्रमाण है ये। तो आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर के सुरों में ये गीत।

सुन रहे हैं कार्यक्रम तस्वीर और मैं आपके साथ प्रियांशी आपको ले चल रही हूँ सोनभद्र की यात्रा पर। और हमारा अगला पड़ाव आपको सोनभद्र के एक सुंदर और आधुनिक ऐतिहासिक संदर्भ से रूबरू कराएगा। जब आप यहाँ के विंध्य पर्वतों की हरी भरी वादियों और घाटियों से गुजरेंगे तभी आपको ज्ञात होगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1954 में जब वे यहाँ आए थे और चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान इस जगह को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता वाकई आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। लेकिन सोनभद्र सिर्फ पहाड़ों और वादियों का घर नहीं है, ये देश की ऊर्जा राजधानी भी है। अगर आप इंडस्ट्रियल टूरिज्म या आधुनिक भारत के विकास को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ का रिहंद बांध और भारी मात्रा में मौजूद कोयले की खदानें आपके सफर को एक अलग ही अनुभव देंगी। और खास बात यह है कि नेहरू जी के उसी ऐतिहासिक दौरे के समय ही इस क्षेत्र का रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार हुआ था और आज भी ये यात्रियों के लिए एक प्रमुख माध्यम है। तो पहाड़ों की इस हरियाली और ऊर्जा से भरे सफर पर आइए सुनते हैं ये गीत।

किशोर कुमार के सुरों से हम सब भी ऊर्जा से भर गए। तो अब चलिए आगे बढ़ें अपनी यात्रा पर। रोमांच के शौकीनों के लिए हमारा अगला सुझाव है बनारस से मात्र 2 घंटे की दूरी पर कैमूर पर्वतमाला की ऊंचाइयों पर स्थित रहस्यमय विजयगढ़ किला। मूल रूप से 5वीं शताब्दी में चोल वंश के शासकों द्वारा निर्मित इस दुर्ग का 11वीं शताब्दी में राजपूत राजा विजयपाल द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। हिंदी साहित्य के पहले तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता का सीधा संबंध इसी किले से है। यहाँ आज भी पर्यटक राजकुमारी चंद्रकांता का रंग महल, नौगढ़ और चुनारगढ़ तक जाने वाली गुप्त सुरंगें और लाल पत्थरों पर उत्कीर्ण सम्राट समुद्रगुप्त और विष्णुवर्धन के प्राचीन शिलालेख देखने आते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किले के ऊपर बने राम सागर और मीरा सागर तालाबों का पानी भीषण गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। इतिहास के इस अद्भुत और रहस्यमयी पन्ने को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जोड़ते हैं और आनंद लेते हैं इस मधुर गीत का।

तो प्रिय श्रोताओं, कुछ और मनोरंजक बातें करें सोनभद्र के बारे में। उससे पहले वार्ता करते हैं इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों की। अगर आप दिल्ली से सोनभद्र का सफर प्लान कर रहे हैं तो सड़क मार्ग से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप लगभग 9 घंटे और 30 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। वहीं अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो नई दिल्ली से रांची राजधानी जैसे ट्रेन आपको सोनभद्र स्टेशन ही पहुँचाती हैं। वाराणसी से इसकी दूरी मात्र 2 घंटे की है, जिसे आप आसानी से कैब या बस राइड के जरिए भी तय कर सकते हैं। इस यात्रा के लिए सबसे उत्तम समय जुलाई से सितंबर का है, यानी कल से ही शुरू हो रहा है। तो चलिए आप और हम भी प्लान करें। ये एक बेहद बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। यहाँ 2 से 3 दिन का लोकल टूर आप बहुत कम खर्च में पूरा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत यहाँ के मुख्य स्टेशन रॉबर्टगंज और चोपन को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ व्हीलचेयर रैंप्स और सुलभ प्रसाधन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि हमारे दिव्यांग और वरिष्ठ सहयात्री भी इस पावन यात्रा का आनंद बिना किसी बाधा के ले सकें। तो अपनी ट्रैवल फहरिस्त में इन जानकारियों को सुरक्षित कीजिए और चलिए आनंद लेते हैं इस रोमांचक गीत का।

श्रोताओं, चलते चलते आपको सोनभद्र का एक ऐसा रोमांचक रूप दिखाते हैं जो आपकी कल्पना को एक नया विस्तार देगा। अपनी इसी प्राकृतिक भव्यता, विंध्य की मनोरम वादियाँ और पौराणिक किलों के कारण सोनभद्र भारतीय सिनेमा विचारकों के लिए भी एक पसंदीदा रंगमंच रहा है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय सिनेमा इतिहास की पहली क्राउड फंडेड फिल्म यानी जन सहयोग से बनी और सामाजिक चेतना की ये कालजयी फिल्म आदरणीय श्याम बेनेगल जी की मंथन, इस फिल्म की गूंज भी सोनभद्र के अंचल के ग्रामीण जनजीवन से बेहद गहराई से जुड़ी रही है। इसके अतिरिक्त बंटी और बबली, गैंग्स ऑफ वासेपुर और क्षेत्रीय और शॉर्ट फिल्म्स जैसे दो दिल बंधे एक डोरी से, सरफरोश और एक लोटा पानी, ऐसी आधुनिक फिल्मों के कई दृश्यों ने भी यहाँ के विस्मयकारी दृश्यों को कैमरे में कैद कर लिया। और यदि आप प्रकृति का साक्षात चमत्कार देखना चाहते हैं तो मॉनसून के महीनों में यहाँ का रुख कीजिए। जुलाई से सितंबर के बीच यानी कल से शुरू होने वाला समय कैमूर की प्राचीन पहाड़ियों को चीर कर नीचे गिरते राजदारी और मुक्ता प्रपात जैसे प्रपात अपने पूरे वेग पर होते हैं। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से दूधिया पानी की तरह गिरते ये झरनों का गूंजता हुआ संगीत और चारों ओर फैली मखमली हरी चादर सैलानियों को एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जाती है जहां पहुंचकर बस यही शब्द निकलते हैं, अद्भुत और अविस्मरणीय। तो सिनेमा इतिहास और प्रकृति का ये विरल संगम देखना अपनी अगली यात्रा में बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए अब रुख करते हैं इस सुरीले सफर के अंतिम पड़ाव की ओर इस ऊर्जावान गीत के साथ।

श्रोताओं, अग्नि पुराण के ऐतिहासिक संदर्भों से लेकर कैमूर की पहाड़ियों के प्राकृतिक वैभव तक आज तस्वीर कार्यक्रम के माध्यम से हमने सोनभद्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप को समझा। आशा है हमारे साथ तय की गई ये यात्रा आपको अत्यंत प्रिय लगी होगी। कल पुनः उपस्थित होंगे एक नए गंतव्य और उसकी प्रामाणिक गाथा के साथ। आज के इस अंक को यहीं विराम देने का समय हो चला है। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तस्वीर कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। इस मधुर गीत के साथ प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

दर्शनी जरा आकाशवाणी दिल्ली ने एफएम गोड़ी टिकरुंग सनाचाच मीडियम वेव किलो हर्ट्ज 6.5 सुमियांग ना मीटर्स निबिया गेचो केबजी तंग शुजुरगु यंग एफएम मेगा हर्ट्ज ग्या तंग चिक तंग शुजुर चिके कांग जे आकाशवाणी लेने शो इमे चुचो चुंगिस छादु कासता चुंगिस तंग फेचुक पा फेमिलुरिक सनाचाच इनास्कुन ला कुदरात फिल्म लु लता मंगेशकर ने सनाचाच लोर सोमकन मजरू यंग लियोन स्टेकन आर डी बर्मन

कैसे था लता मंगेशकर तंग उदित नारायण इस अलखने बड़ी दिल वाला फीमेल वो सनाजत मजरू सुल्तानपुरी सोम्स लयांस टेकन आर डी बर्मन

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
3: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गाँव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
3: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
3: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
3: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
3: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
3: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
3: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
3: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
2: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
3: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
2: जी,
3: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
2: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
3: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
2: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
3: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
2: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
3: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
2: जी।
3: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
3: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
2: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
3: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
4: फूलों से नित हंसना सीखो,
3: भौरों से नित गाना,
4: भौरों से नित गाना,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
4: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: सीखो शीश झुकाना,
4: सीखो शीश झुकाना,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
4: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: कोमल भाव बहाना,
4: कोमल भाव बहाना,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
4: दूध तथा पानी से सीखो,
3: मिलना और मिलाना,
4: मिलना और मिलाना,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
4: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
4: सूरज की किरणों से सीखो,
3: जगना और जगाना,
4: जगना और जगाना,
3: लता और पेड़ों से सीखो,
4: लता और पेड़ों से सीखो,
3: सबको गले लगाना,
4: सबको गले लगाना,
3: दीपक से सीखो जितना,
4: दीपक से सीखो जितना,
3: हो सके अंधेरा हरना,
4: हो सके अंधेरा हरना,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
4: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
4: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: सच्ची सेवा करना,
4: सच्ची सेवा करना,
3: जलधारा से सीखो आगे,
4: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
4: जलधारा से सीखो आगे,
3: जीवन पथ में बढ़ना,
4: जीवन पथ में बढ़ना,
3: और धुएं से सीखो हरदम,
4: और धुएं से सीखो हरदम,
3: ऊंचे ही पर चढ़ना,
4: ऊंचे ही पर चढ़ना।
3: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है, हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।

0: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
1: खो देंगे कोई खो देंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहार।
2: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
3: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
2: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
1: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
4: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ गाओ।
5: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों है ना कोयल बहन, कू कू।
6: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
7: मेरा भी कुछ यही हाल है।
4: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
7: क्या
6: क्या
7: क्या, क्या?
4: सब तक कोयल गाए,
6: कू, कू।
4: नीचा सब तक सांप सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
2: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: दम लगा के कू।
7: ऐशा
4: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? आ, करता होगा पड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं, ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं, काम काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा, काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है, काम काम काम।
7: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
4: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
7: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब, ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
4: काँ, काँ, काँ।
0: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया, रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: ya va ahí. Papi, hana pie, tu ya va ahí.
1: Kaam, kaam, kaam. Aye, isne to bas rat hi pakad li.
2: Bhau, bhau, bhau. Aye, ye kauwe ka mazak uda raha hai.
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा, भाव भाव, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: काम काम काम, कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं, अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काम काम, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे, सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना, अभी तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो, यही दंड हो।
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: काँ, काँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काँ।
5: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
6: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
6: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
5: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
1: काम, काम, काम।
5: तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
5: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
6: हाँ, मैं भी हैरान हूँ, कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो।
3: पिए दूजा पानी, कब आएगी बरखा, कब बरसेगा पानी।

0: जाए, बिन बारिश बिन पानी, बिन बारिश बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। मैं हूँ कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी।
2: अरे
1: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: दर्शन जराई एनसीईआरटी चिंता जत खाने डिग्री उमंग सनाजात।

0: আজি আকাশবাণীলে নিজত নিমিচুজত চিকচাদু কাসাত আকাশবাণী দিলে নে স্কুল্লা হিন্দি নানাচুল হ্যাং তেজ তিং নে অংরেজি নানাচুল সানাচার
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে লভলিন নিগম। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the inauguration of services at Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. He added that with UPI now live in Greece, eligible customers can transfer money instantly, securely and seamlessly. Army Chief General Upendra Dwivedi today said the Indian Army derives its strength not from any single individual but from the unwavering faith of its soldiers, commanders, veterans, families and the citizens of the country. General Dwivedi said this while relinquishing the appointment as the Chief of Army Staff in New Delhi today. He emphasized that serving in the Indian Army for over 4 decades has been his greatest privilege.
3: भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने
5: Our steadfast soldiers remains deployed across mountains, deserts, glaciers, forests and challenging border regions, safeguarding the nation under all circumstances. They have played a vital role in counter-terrorism operations and have demonstrated exceptional courage and resilience in diverse operational environments. From dense forests to United Nations missions, their unwavering dedication, discipline and professionalism exemplifies the highest standards of service. Operation Sindoor stands as a testament to their valor, operational excellence and steadfast commitment to the nation.
3: Operation Sindoor iska jwalant udaharan.
4: Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan has emphasized that the vision of Viksit Bharat cannot be achieved without developing the agriculture sector. Addressing the closing ceremony of Khet Bachao Abhiyan in Hisar, Haryana today, Mr. Chauhan informed that the government is working on developing a mobile app that will provide information regarding soil and the amount of fertilizer it requires. He urged farmers to use fertilizers and insecticides in their farms rationally in order to maintain the health of the soil. He also advised farmers to adopt the practice of organic farming. The government has extended the due date for filing of appeals before the Goods and Services Tax Appellate Tribunal, GSTAT, till the 31st of next month. According to the Ministry of Finance, an earlier notification dated September last year had notified today as the last date for filing of appeals before GSTAT. It is noted that the due date has been extended in view of the recent representations from various stakeholders highlighting technical difficulties due to the rush to file appeals on the GSTAT portal. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters as part of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls across the National Capital Territory of Delhi began today. As part of the exercise, over 13,000 booth-level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. India has reaffirmed its strong support for the Financial Action Task Force, FATF, describing it as an indispensable pillar of the global fight against terror financing and money laundering. The statement came after Pakistan criticized the FATF following the neighboring country's placement on the organization's grey list for increased monitoring. Speaking at a UN event on the sidelines of Counterterrorism Week, India's permanent representative to the UN, Ambassador P. Harish, said attempts to question FATF's credibility reflect fear of scrutiny rather than genuine concerns. In FIFA World Cup, Germany has been knocked out of the tournament in the round of

मीडियम वेव 284 अशारे 9 मीटर्स यानी 1053 किलोहर्ट्ज़ और FM 101 अशारे 1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों, फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ में। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है आर डी बर्मन।

लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में अगला गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में मदहोजी फिल्म से। शकील आज़मी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रूप कुमार राठौड़ ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आप सुनते हैं कुमार सानू को हम हो गए आपकी फिल्म में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे अदित नारायण और सुजैन डी मेलो की आवाज़ों में शाबित फैंसी गीत। अगला गीत लीजिए, सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में खामोशी फिल्म से। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सवारा है जतिन ललित ने।

अभी आपने सुना करीब फिल्म से गीत कुमार सानू और संजीवनी की आवाज़ों में। कार्यक्रम में अगला गीत लीजिए, सुने उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में कुछ न कहो फिल्म से। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में फौजी भाई सुनेंगे ये दिल आशिकाना फिल्म से गीत उदित नारायण की आवाज़ में। समीर के लिए इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

0: विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार

0: सर हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा, मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के

0: दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमरीका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमरीका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मुझे आकाशवाणी लेने जोत नीज न फेच छातु कासता लुरिक संचसला फुलिन इन स्कूल ला पद्मचुंडो ले सलकनी इलुबो सनाजात

0: ओ कसा मा युल थारिन जिया दरे लुंगपेना मा
1: थारिन ला रे बेना ना जा तुम बुदाने का दु पत्तले सा सा मा जा लजा रिया दु पत्तले मान क्या
0: या कसा जिक्चेले दक्सा कने जुक्सन गाजा
1: ताना रगाता ओ बिजा कनी स्टोन ले याले
0: या कसा जिक्चेले तने लु गजुक चिक्सन इन कसा
1: Yeah,
0: Julie.
1: Yeah, Julie.

0: इन्ना तान्यां पो मशे डिग्रीम पोतुन स्तिमा हेलो जुले डिग्री मिना खाप थुशेस ला जाल जावारें सिस पितो ओचुचो जिशी नाश ना चुपा टेलीफोन नंबर 252064 का फोन जो आजात यां राना सो से दोतपा नाजिन ले लुंटिन खांड गुते स्नास मुन में लूस ना सोक सिक संचेस ला फुलें जितां है तेनो ई लूमुन गुते फंतोस्तां से म्यांज ने नाजात जुले
1: दर्शनी चरणी टेलीफोन गुते नगजत कनी लदख सिलुई डिक्रम हेलो जुले सनजत्स डिक्रम फुलकनिन पिन मिफम दोर्जे गजे आकाशवाणी लेने शुंजिकताइन फितो छोचोत श्रादंस कर्मांग अपचुंगा छादुक गजतंग अशी तेरिंगे डिक्रम निस्पतंग थोरे से डिक्रम कुनी स्कोर कुन संचेसला फुलिन डिक्रम निस्पिना दक्सा छोचो टुबिका आकाशवाणी दिल्ली ने हिंदी तंग अंग्रेजी नमन छो डॉक्टर्स कर्मा श्रीका जीव संस्कार डिक्रम संचेस लापन ई डिक्रम नवस मोनला स्तंजी चने यर्गे से थोगा तंदे यान डिक्रम नवस कुजब्स कुंचोगा चुतंगन पो मेंटो बद गेदे स्कोला जीव चलेंजिक समय जाबन डिक्रम फुलकन जिक्सन मंगे डिक्रम में कोरिक सतकन सोना मोचो डॉक्टर्स कर्मा जीव चुका मखनी चुतंगने पे डिक्रम नवस मोनला संचेस लापन लदसना नचुलतंग दिलचस्प सने जबिन चुचोर दंतास के मचों का दंतां पे देखा कंजस्टोर में सेल के निलोरे सने जबे आकाशवाणी श्रीनगर में दंतास के मजबूती का और के नमन नचुलतंग तब सरा देरिंग साली चुचोर ज्ञात का जुनून बनी पे देख रहे संचेस लापुले इन आसमान ला रिगलांग तंग लम्शुल गुन शुक्रचे से थोगा तंदिल यहाँ नजिक रे में लगा वॉलीबॉल सेल पास को जब सेवांचो जिंतां सोना मांगे तंग यंपो टिवटिलन सेने जाने डिक्रम फुलकन कुन सोना बोलना तंग रिक्सना मो डिक्रम में कोरिक सरकन लोपसंग नंगल ग्यातं पेदे का सोना मांगल सेल के ने डोगलो रे सेंचेस लपलन यंग डिक्रम इस पेस तिंजो पेका देरिंग सानी चोचो गुदां पेदे का पद्मा दोचे तंग सेवां पल्चो रे सेल के ने शुमलो रे सेंचेस लपलन कैसे तंग अजी थोड़े से डिक्रम तंग पो तंग इस पेस कोर कुन सेना जा डिक्रम तंग पे ना थोड़े से मधुर चुचोर दंतां स्कैन मासूम चु सपने से कास को जब्स देखे ना अंदर में रोशनी सने जब दंतां स्कैन मासूम चु सब दोनों का नजे डिक्रम को नेस कोर कुन तब पना अजी डिक्रम संचित लाभलन चुचोर दंतां स्कैन मासूम चु का इन आसमान ला लोग संगों तक तंग ठोपा बुने फुलकने सोंगे जानी बापू तंग ठोपा बुने फुलकने नाते कवाली यहाँ तब पना अजी डिक्रम इस तिंग चुपे का सेवानों को तंग चुंडुक दोषे फुलकने छोस लो संचित लाभलन ग्यादका आकाशवाणी दिल्ली ने समाचार प्रभात तंग मॉर्निंग न्यूज छोचोर ग्यातं फेदिका टुंडुक सिरिंग तंग सेवा मंगेल फुलकने जुमलोरिक संचित लाभलन रुपये का लदख सुना नचुना गुदास कर्माश नेका लसनिस कोला खेपटक्स छोचोर गुदास कर्माश चुका सिरिंग नोरजन सेलकने लोरिक संचित लाभलन गुदां फेदिका फिल्म लोरिक आकाशवाणी दिल्ली ने चुका एफ एम गोल्ड डिक्रिंगन थोरिंगे में छोचो चुगे से का फिल्म लोरिक सने जबिन NCERT चिंदाग जद कने डिक्रम उमांगे खाक्स्तों चिकनों सुंग्या चुपके पसन जदिन छोचो चुगनिस्तां फेदिका चीगे का आकाशवाणी दिल्ली ने हिंदी तां अंग्रेज नाम नचु मगनी क्योंतों गुने पिया डिक्रम नाम फिल्म लोरे एक संचे सफलें छोचो चिकनां स्कर मर्श चुईका निस्तां फेदिका स्कुनला चिरिंग चाक दोरे सल कने लू यां किस्तिंग ने देश के टोलमा तां ठुपा गुने सल कने लोरे गां संचे सलापने यहाँ डिक्रम तंग पे सिंचुक पे का थोड़े नीमे चुचोत निस्तांस कर मांग अप चुनाई का लदख से मांग अप चुल समय जदिन कैसे तंग अजी थोड़े से डिक्रम निस्पे स्कोर बन जूना डिक्रम निस्पे ना थोड़े पी दो चुचो शने का लदख से मांग अप चुल श्नादांस कर मांग शने का स्पॉटलाइट डिक्रम समय जदिन यहाँ तेज तंग ने चिरिंग चक दो रे सेल कने शुरू जे संचित लापले श्नादांग पे देखा फिल्म लोरिक नजे डिक्रम गुने स्कोर गुन समय जदिन चुचो श्नादांस कर मांग अप चुनाई का आकाशवाणी दिल्ली में टुगे का हिंदी तंग अंग्रेजी नमन नचु टुकता स्कर्मा श्रीका दमन पिस कतलन डिक्रम संचेस लापन डिक्रम में कोरिक जात कन सोना मंचु टुकता स्कर्मा जिप्चे का मापनी क्योंकि गने पिया डिक्रम में नंगा फिल्म लोरे संचेस लापन लदख से ना नचुल तंग डेलचल सने जदिन चुचोल दुनता स्कर्मा चोंगिका दुनतंग पेरिका सेरिंग तैशी सेलकनी लोरे संचेस लापन आकाशवाणी श्रीनगर में दुनतांस कर्मा जिप्चुका और दिन नमन नचुल तंग तब सर थोड़ी सानी छुचोर गया दिका बल्दी डिक्रम में दोवत सर को संचित सफलन डिक्रम में कोरिक सर कन सोना मंचो ज्ञातं फिर दिका टैशी नीमातं ठपा गुने सेल कनी जबरे लोरे संचित सफलन Yanjikrim is bit stingy to go to return to soap, put on pedica, small lacuns is to make them to bubble a self and Louis and the stingy, Savamu putam, Rinchen and Gilly self and Lodi, Sanchez Lapin. Kasa, even in Pinaji, during a dictum is patam for a say, dictum gunny scorpion. Naja Akashwani Leni Shunchik time, Pito Chutsot, Tukchab. Kasita Akashwani Delini, Smola Hindi, and Pistingi, Angrezi Namanatul, Sanajar.

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरोप बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India has signed 28 migration and mobility partnership agreements with over 26 countries. Speaking at the Human Resource Mobility Forum in New Delhi, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said the collective responsibility of nations is to combat illegal migration, exploitative practices, fraudulent intermediaries and human trafficking. He said India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform.
3: One key pillar which has brought about a transformation in the governance of migration has been the use of digital systems and tools. India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform. And since its inception, more than 5 million immigration clearances have been issued. This digital ecosystem has become a global example of leveraging technology to protect migrant workers while facilitating mobility.
2: President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president said every educated youth should help bring forward those left behind and contribute towards achieving the goal of a developed India by 2047. Union Education Minister Dharmendra Pradhan urged the students to become job creators rather than job seekers. The Special Intensive Revision SIR of Electoral Rolls has begun in Delhi, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra and Jharkhand today. As part of the exercise, in Delhi, over 13,000 booth-level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation.

मीडियम वेव 284.9 मीटर्स यानी 1053 किलो हर्ट्स और एफ एम 101.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लय केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो रहा है शाम के 6:40। लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम।

जय हिंद। स्वागत है हमारे प्यारे फौजी भाइयों का आज के इस वक्त के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में फौजी भाई सुनेंगे फिल्मी गीत, तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं तुलसी कुमार और के आवाज़ों में रेडी फिल्म से गीत। गीतकार हैं नीलेश मिश्रा और संगीतकार प्रीतम।

आइए अगला गीत सुनते हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से, अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा मानिक की आवाज़ों में। इस गीत के बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और इसे संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

फौजी भाव के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अगला गीत सुनिए, आतिफ असलम की आवाज़ में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को धन से सवारा है प्रीतम ने।

अभी आप सुन रहे थे राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में दबंग फिल्म से गीत। गीतकार थे फयाज़ अनवर और संगीतकार थे साजद वाजिद। फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के लिए केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में लीजिए अगला गीत सुनिए तमाशा फिल्म से अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को धुन से संवारा है ए आर रहमान ने।

फौजी भार के इस कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आशिकी 2 फिल्म से गीत, पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की आवाजों में। गीतकार है इरशाद कामिल और संगीतकार जीत गंगोली।